तिलावत से पहले शैतान को दूर करो, पढ़ो नहीं आउज़ बिल्लाह मिन शैतान, पढ़ना नहीं है बल्कि शैतानी कॉन्सेप्ट को दूर करना है। क्या माने हैं? इन्हें सामने टीवी बंद नहीं होगा जब तक कि ये हाथ का गैजेट बंद नहीं होगा, कुरान खुलने वाला नहीं है। तमाम चीज़ों का अलग करो, फिर अल्लाह की बारगाह में इस बात और ये समझो कि अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। देखिए कुरान के चार कम अज़ कम स्टेजेस हैं और अच्छी तरह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के समझें। पहला स्टेज है फ़करा मा तयस्सरा मिनल कुरान, फ़करा पढ़िए कोई बात नहीं, फ़करा मा तयस्सरा मिनल कुरान, फ़करा मा तयस्सरा मिनल कुरान, याद हो गया ना आप? बोलिए फ़करा मा तयस्सरा। क्या माने हैं? रिसाइट एज मच एज यू कैन, जितना हो सके तुम कुरान पढ़ो। तो ये पहला मरहला है, रिसाइटेशन ऑफ कुरान फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद पढ़ रहा हूँ काय के लिए, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम तदब्बर नहीं करते, रिसर्च नहीं करते? कुरान जो है तदब्बर की किताब है, वेरी डीप है, इसलिए कलाम अल्लाह का है और इस चैलेंज के साथ है कि ला रैब फ़ीह है, इसमें किसी तरह का डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, मैं बताऊँ कि 1993 में UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। कब की बात है? या हमारे सामने की बात है, 1993, बहुत से लोग आप लोग तो 93 में उसने ये डिसाइड किया और रिसर्च किया, करने के बाद पेश किया दुनिया के सामने। हार्ट सिर्फ पंप नहीं करता, सिर्फ ब्लड के पंप करने का नाम नहीं है हार्ट। उसमें उसने दिया, आप लोग AI में जा करके देख सकते हैं, लिटिल ब्रेन, द लिटिल ब्रेन इन द हार्ट। तो मालूम हुआ हार्ट हार्ट ही नहीं है, उसके अंदर एक सोचने की सलाहियत भी मौजूद है। तो हम अब तक समझ रहे थे कि दिमाग सोचता है, लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि नहीं, हमारी रिसर्च ये कह रही है कि हार्ट के अंदर एक छोटा सा ब्रेन भी है। 1400 साल पहले कुरान मजीद ये कहता है अफला यसीरून फिल अर्द, क्या ज़मीन की सैर नहीं करते, लहुम कुलूबुन यफ़क़हून बिहा, ताकि ज़मीन की सैर करो ताकि तुम्हारे पास ऐसे दिल आ जाएं जिससे तुम समझ सको। 1400 साल पहले कुरान लिटिल ब्रेन इन द हार्ट की बात कर रहा है, 1400 साल बाद एक रिसर्च स्कॉलर कह रहा है कि जी हाँ ये हकीकत है, ये हार्ट सिर्फ पंप करने वाली चीज़ का नाम नहीं है, इसमें सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है। और एक आयत सूरह आराफ की है, लकद दरअन अली जहन्नम कथीरम मिनल जिन्न वल इंस, 179, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, यानी हमने उनको दिल दिए हैं मगर वो सोचते नहीं हैं। तो मालूम हुआ दिल में सोचने की सलाहियत मौजूद है, उसमें ब्रेन मौजूद है। जो आज साइंस जाकर के ये कह रही है 1400 साल पहले विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, एक ऐसी बात कह रहा है जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, टीचर नहीं देखा, तो पता चला एक सोर्स है, उस सोर्स का नाम है वही। वही वो परफेक्शन की तरफ दावत देती है, इससे बढ़कर कोई परफेक्ट सिस्टम मौजूद नहीं। चलो आप पढ़िए। पहले मरहले में रिसाइटेशन ऑफ कुरान, यानी फर्स्ट स्टेप इज टू रिसाइट कुरान, यानी पढ़ना कुरान का पढ़ना। दूसरा स्टेज है कुरान को समझ के पढ़ना, है ना भाई, कुरान को अंडरस्टैंड करके से पढ़ना अफला तद। उसके बाद है कुरान को रिसर्च के लिए पढ़ना। आप लोग नौजवान माशाल्लाह हुसन, हर एक अपना अलग अलग प्रोफेशन है, इस कॉलेजेस में हर एक अलग अलग सब्जेक्ट में मेजर, हर एक अलग अलग है। अपने ही मेजर में कुरान ने क्या कहा, मेडिसिन से मुतालिक क्या कहा है, मैथ से मुतालिक क्या कहा है, CA बनना चाह रहे हैं CA से मुतालिक क्या कहा है, अपना दिलचस्पी बढ़ाएं तो आपको बहुत सी आयतें मिलेंगी।

सिर्फ एक ही नमाज है जिसमें सूरह फातिहा नहीं होती, जिसके पढ़ने से लोग डरते हैं, जो मुझे जिसमें सबको जाना है एक दिन जो है वो नमाज होने वाली है। ठीक, हर नमाज में ये सूरह मौजूद है। क्या सूरह में? मालिक यौमिद्दीन। ट्रांसलेशन क्या है? मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। यहाँ पर दीन जो इस्तेमाल हुआ है लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग है जजा के, यानी दीन के माने जजा, रिवार्ड और पनिशमेंट, दीन का लिटरल माना। अब आइए दीन का रियल माना क्या है, यानी इस्तेलाही माना क्या है, खुद कुरान से पूछे। जरूरी अक्तुल मूसा, फिर हम कहते मुझे छोड़ दो, मैं कत्ल करता हूँ मूसा। अरे भाई किसने पकड़ा तुमको भाई, छोड़ो क्या कह रहा है, यानी अनाउंस कर रहा है दुनिया के सामने आई विल किल मूसा। आज भी वही है अरोगेंसी जो आज है, छोड़ दो हमें ईरान को बम्बार करना है, तो फिरौनियत कुछ फर्क नहीं हुई है। वही अंदाज है कि जरूरी अक्तुल मूसा, छोड़ दो मुझे, मैं कत्ल करूंगा। क्यों? इन्नी अखाफ अन युबदिल दीनकुम। अजीब है कुरान, अजीब है कुरान, बहुत ही लजीज है, बहुत ही लज्जत बख्श है, इल्म की इंतहा। कलाम परवरदिगार है ऑफकोर्स। अब लोग जरा सा करीब आ जाए, बाद में आने वालों के लिए आसानी हो। सलावत पढ़िए, नौ बजे शुरू हो जाती है, मैं 9:10 तकरीबन बैठ जाता हूँ। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले, एक दुरूद पढ़ना। है मेरे साथ आप लोग इंशाल्लाह, और एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। फिरौन कह रहा है कि छोड़ दो मुझे, मैं फिरौन, मैं मूसा को कत्ल करना चाहता हूँ। क्यों कत्ल करना चाहता हूँ? व्हाट ही हैज डन रॉन्ग, क्या किया मूसा ने तुमको? इन्नी अखाफ अन युबदिल दीनकुम, मुझे डर है कि तुम्हारा दीन वो बदल ना डाले। यहाँ दीन से मुराद क्या है? ने सिस्टम है। वो चाह रहा है कि मेरा से फिरौनी सिस्टम चले, हजरत मूसा चाह रहे हैं अल्लाह का सिस्टम चले। तो मुझे डर है कि मूसा तुम्हारा दीन बदल ना डाले। आज भी वही खौफ है वेस्टर्नर्स को, यानी आज की मॉडर्न जितनी भी सिस्टम है उनको यही खौफ है कि ये दीन इस्लाम जो है इतना नेचुरल है, हर एक के जहन में आने आ जाता है, हर एक इंसान एक्सेप्ट करता है। आज सारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पॉवर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, इसको अंदाज़ा करते चले जा रहे हैं, वो दीन की तरफ आते चले जा रहे हैं, वो समझते चले जा रहे हैं हम पर जुल्म हुआ। और हमारा ये अगर कोई जुल्म को ख़त्म कर सकता है तो वो दीन ही ख़त्म कर सकता है, कोई और ख़त्म नहीं कर सकता। तो एक दीन के माना है जजा, इखलास, इंकियाद, और एक दीन के माना है क्या है टर्मिनोलॉजी में? टोटल सिस्टम ऑफ लाइफ। अब आपसे मेरे से मैं सवाल करूँ, सिस्टम ऑफ लाइफ के माने मेरा दीन क्या है? इस्लाम। सब कहते हैं अच्छा, कब्र में जो सवाल आप जो हो रहे हैं कोई फिलोसफिकल सवाल आप नहीं है, सिंपल सवाल है, मन रब, तुम्हारा रब कौन है? इदा जा अकल मलिकान मुकर्रबान, तलखीन में पढ़ते हैं सुनते हैं ना, दो मरतबा तलखीन मुसलसल पढ़ी जाती है, तलखीन यानी रिपीटेशन ऑफ आइडियोलॉजी, बस बस ताकि मुर्दा समझ जाए। तो क्या सब पढ़ा जाता है? दो फरिश्ते आएंगे तुमसे सवाल करेंगे, मन रब्बुक, हु इज योर लॉर्ड। बहुत गौर की बात चीज़ें, जब हदीस पढ़ता हूँ मैं खुद अंदर बहुत परेशान होता है। मैं सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं, आपकी लज्जत के लिए नहीं, बल्कि बहुत ही परेशानी का मसला है। मन रब्बुक, हु इज योर लॉर्ड। अच्छा ये सवाल जो है के जी जूनियर का सवाल है, हर माँ गोद में बिठा करके अल्लाह एक, पंचतन पाँच, इमाम बारह, मासूम चौदह, उसूल दिन पाँच, फुरू दिन दस, हर घर में हर बच्चे को माँ सिखाती है अल्लाह एक है, तुम्हारा रब एक है, सूरह अहकाफ एक है, एक है अहकाब। अहकाब हुक्म कहते हैं 80 ईयर्स पीरियड। हदीस में है कि मन रब्बुक

सवाल के जवाब में बाज लोगों को 80 साल लगेंगे कहने के लिए अल्लाह जल्ला जलाल हो रब्बी। क्यों, वहां है वजह क्या है? इसलिए कि जवाब ये नहीं है जैसे इम्तिहान जाने से पहले मैं याद कर लिया मैं ये जवाब दूंगा, ना। जिंदगी जो मेरी गुजरी है रुबूबियत परवरदिगार में गुजरी है तो निकलेगा अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी। मगर मेरी जिंदगी गुजरी है मैं हूँ हूँ हूँ, मैंने किया, मैं सेक्रेटरी, मैं प्रेसिडेंट, मैं खतीब, मैं, इतना अंदर एनग्रेव हो गया है जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो, कहेगा मैं, कह लगाओ इसको 80 साल तक पता चलेगा ये है कि वो रब है। तो इसके माने यह है कि रुबूबियत परवरदिगार यानी अल्लाह के गार्डियनशिप को एक्सेप्ट करने का नाम है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हूँ अल्लाह। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु बिज़ालिका व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सो जो कुछ है वही है। अगर आज मैं खुद जुमा में कह रहा था जो हमने करबला का सबसे अहम दर्स है वो तौहीद का बिल्कुल भुला दिया है। इमाम हुसैन चाहते थे तमाम इंसानियत को अल्लाह की चौकट तक पहुँच जाए, हम लोग उस तक पहुँचे ही नहीं। इमाम हुसैन ने रोज आशूर का इलाही अंत थिकती फी कुल करबिन व बला, परवरदिगार मुझे कोई भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है, तुझ पर भरोसा है। और वही उसी की बहन दरबार यजीद में किद कैद सही, तू जो कोशिश करना कर ले, जितना पैसा खर्च करना चल ले, जितनी एनर्जी करना कर ले, वल्लाही ला तम हो जिक्रना, खुदा की कसम हमारे जिक्र को तो खत्म नहीं कर सकते। जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ में आई बात? अब ये दूसरा सवाल है, तुम्हारा दीन क्या है, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है? जवाब क्या है? इस्लाम है। क्या जवाब इस्लाम कह देने से जवाब है? मेरी जिंदगी इस्लामी उसूलों पे चली है तो इस्लाम निकलेगा। मेरी जिंदगी ना, मेरी जिंदगी तो कुछ और है, मैं जाहिरन कुछ और कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेरी लाइफ में है, इस्लाम मेरी ज़िंदगी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया हूँ, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक मेरी डे टू डे लाइफ। मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नमाज पढ़ना है, 5 वक्त पढ़ लिया मैंने, रोज़ा रखना है, बेहतरीन हो गया, अल्लाह कबूल करे, इससे ज़्यादा मेरा काम नहीं है। इस्लाम कहता है कि इस्लाम के माने यह नहीं है कि तुम सिर्फ मस्जिद में मुसलमान रहो, घर में भी मुसलमान रहो, बीवी बच्चों के साथ मुसलमान रहो, मार्केट में भी मुसलमान रहो, आँख तुम्हारी मुसलमान रहे, कान तुम्हारे मुसलमान रहे, जबान तुम्हारी मुसलमान रहे, तुम्हारी पूरी जिंदगी इस्लाम पर गुजरेगी तो मुंह से निकलेगा मेरा दीन इस्लाम है। अगर मेरी जिंदगी नहीं गुजरी है तो कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलने वाला, इसलिए कि ख्वाब मैंने देखा कि शेर जो है हमला कर रहा है, भागना चाह रहा हूँ, नहीं भाग सक रहा हूँ, तो मेरे ख्वाब मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे आमाल का असर मेरे ख्वाब में है। उसी तरह से कब्र भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे आमाल के कंट्रोल में है। जैसे मैंने आमाल बजा लाए हैं वैसे अमल उसका असर होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मैं आपको चेक एंड बैलेंस करना चाह रहा हूँ, हम सब मिल करके सब तहकीक करें, आया हमारी लाइफ इस्लामी है या नहीं है। आई हैव टू, आजकल जो है सेल्फ टेस्टिंग सेल्फ एग्जामिनेशन है, बहुत से बीमारियां करें, तुम सब खुद जो है सेल्फ एग्जाम करो, उसके बाद तुम बाद में जाके डॉक्टर के पास पूछो, बहुत सी चीज़ें खुद बता सक समझ सकते हो कि तुम्हारी हालत क्या है। सेल्फ एग्जामिनेशन करें कि मैं कौन हूँ, ये क्या है, ये मैक टेस्टिंग, मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, कैसे टेस्ट करें? मैं 5 वक्त नमाज पर झुक जा रहा है तो बता रहा है कि मुसलमान हूँ, अल्लाह अकबर के साथ सब कुछ छोड़ दिया, मुसल्ले पर आ गया, और वो बिजनेस की कुर्सी भी छोड़ दिया और मौलवी के मेंबर भी छोड़ दिया, तब वो मुसलमान है। पहला नमाज, अच्छा नमाज मेरी सही है या नहीं है, मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, है मेरी नमाज सही है नहीं है, क्या सच बोल रहा है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं है,
امانتدار ہے کہ نہیں ہے؟

तरफ और इसको दूसरे तक पहुंचाएं कि दीन इस्लाम जो है तुम्हारे दुश्मनी के लिए नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस्लाम की तरफ रागिब हो जाओ, ताकि सब मिलकर उन चीजों को जो इस्लाम की इंसान की भलाई के लिए है उस पर अमल करें। क्या माने हैं 10% ऑफ द पॉपुलेशन डिवोरिंग द वेल्थ ऑफ द 90%? क्या माने 10% लोग दुनिया के जो हैं दौलत को जमा कर रहे हैं।

को खाना नहीं है, झोंपड़ी नहीं है, और बेहतरीन मकान बेहतरीन बिल्डिंग है, सामने उतरने के साथ ही देखा एक झोपड़ा ऐसा है जिसमें अंदर बैठने को भी जगह नहीं है। इतना इम्बैलेंस सोसाइटी में है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, इसका बच्चा भी इंसान का बच्चा है, उसका बच्चा भी इंसान का बच्चा है। क्या माने कि मेरा बच्चा आराम से रहे, दूसरे इंसान का बच्चा? ये दीन ने सिखा, दीन ये कहता कि स्ट्रगल करो, एक ऐसा निज़ाम पैदा करो, सबको एक ही लेवल पे आ जाओ। किताब है, बेहतरीन किताब है, वो लिखने वाला क्रिश्चियन है, जॉर्ज जर्दा, लेबनान का ऑथर है। आप लोग ऑनलाइन जाइए, आजकल किताबों के लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं। अरबी में किताब है इमाम अली सौत अदालतिल इंसानिया, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है इमाम अली द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। बेहतरीन, उसमें एक मिसाल देता है कि मौला के 4.5 साल की हुकूमत के ज़माने में मौला ने तोहफे में कहा, मैं हुकूमत कर रहा हूँ, कोई भूखा है? सारे मजमे छल पूरा फर्क मजमा भरा हुआ था कूफे की मस्जिद में, सबों ने कहा या अली अब कोई भूखा नहीं है। मौला ने कहा मैं हुकूमत कर रहा हूँ, किसी के पास लिबास नहीं है? सबों ने कहा मौला हम आपकी हुकूमत में सबके पास ड्रेस मौजूद है। मौला ने कहा कोई है जिसके पास शेल्टर नहीं है? सबों ने कहा सबके पास शेल्टर मौजूद है। तो बॉर्डर्स को बढ़ाना और है, अदालत को बढ़ाना और है। मौला ने बॉर्डर्स को नहीं बढ़ाया, अदालत पर काम किया ताकि इंसान का पूरा हक मिल जाए। चुनांचे हिस्ट्री को लिखना पड़ा, कुतला फिल मेहराब लिशिद्दत अदले। व्हाट इज द कॉज ऑफ द शहादत ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम? क्यों शहीद हुए? व्हाट ही हैज डन रॉन्ग? हिस्ट्री को कहना पड़ा लिशिद्दत अदले, ही वॉज वेरी सीवियर इन रिगार्ड्स टू जस्टिस। जस्टिस के मसले में किसी की परवाह मौला अमीर मोमिनीन ने नहीं की। तो पता चला आदिल हकीकी ज़ात परवरदिगार ने आदलीन को भेजा, उन आदलीन का नाम है ऐमे मासूमीन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अगर उसकी झलक देखना हो तो देखिए शहीद उम्मत, इमाम उम्मत, शहीद उम्मत, रहबर उम्मत, तीनों टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह समझ। इमाम उम्मत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह, जिन्होंने रिवाइव किया रिलीजन को। शहीद उम्मत आयतुल्लाह खामेनी, पूरी दुनिया रिसर्च करी कि क्या छोड़ा इसने, क्या छोड़ा इसने, क्या छोड़ा, क्या कुछ भी नहीं छोड़ा उसके पास, उसकी भी कुछ भी नहीं था। अरे पता चला कि या वो शख्स है जिसने जबानी नहीं अमली मैदान में बताया दीन जैसा है वैसे ही हम अमल करके इस दुनिया से जा रहे हैं, मैंने इस दुनिया से कुछ नहीं लिया है। ज़रा समय भी आप भी आप लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला ये मैं और सुबह भी पढ़ रहा हूँ, मेजॉरिटी आप भी आज वी आर अल्हम्दुलिल्लाह कम्फर्टली लिविंग हियर, एक जुमला कह रहे हैं है मेरे साथ आप लोग ज़रा सा सीरियस। अल्लाह कुरान में हर एक मिसाल मौजूद है, कुरान में हर एक मिसाल। लकद सर्रफना लिन्नासे फी हादल कुरान मिन कुल्ले मसल, हमने इस कुरान में हर एक मिसाल दी है। ऑल पैराबल्स आर देयर, जिंदगी के जो भी आप चाहते हैं मिसाल मिलेगी। बादशाहत क्या है, व्हाट इज ए किंगडम, कुरान बताता है। हजरत सुलेमान, ठीक, सुलेमान बादशाह थे, कैसे बादशाह थे? वैसी हुकूमत किसी को मिली ही नहीं, न सिर्फ बादशाह थे, चरण पर बादशाह थे, परन पर बादशाह थे, जिन्नात पर बादशाह थे, इंसानों पर बादशाह थे, हवाओं पर बादशाह थे, इनका कब्जा था, ही वॉज वेरी पावरफुल किंग। ठीक, आपको मालूम है क्या ही वॉज, व्हाट वॉज हिज जॉब? बादशाह से जीते नहीं थे, मजदूरी करते थे जीते थे, अपनी बाज, इतना सब कुछ हाथ में पावर है मगर अपने पावर से कभी उन्होंने कुछ नहीं लिया, अपनी मजदूरी से। अब रिवायतें उठाइए, रिवायतें कहती हैं कि सबसे आखिर में जो नबी जाएगा जन्नत में वह हजरत सुलेमान, जो इतना पावरफुल इस दुनिया में रहा, पैगंबर रहा, मासूम रहा, उसने कोई गलती नहीं की, सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। क्यों?
इसलिए कि फमन यअमल मिसकाल ذَرَّةٍ खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ذَرَّةٍ शर्रन यरा। क्या इस चीज़ को रहबर उम्मत ने

0: नहीं पढ़ा था, शहीद उम्मत ने नहीं पढ़ा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी ख़त्म हो जाए। आयतुल्ला जवाद आमोली कहते हैं कि हम लोग एक मीटिंग में थे, मालूम है कि मीटिंग जो है खबरगान की मीटिंग थी, उस मीटिंग में फर्जंद आपके लाते जाते कुछ काम कर रहे थे, खान दस्तरखान बिछा, रहबर ने इशारा किया, शहीद उम्मत ने, निकल जा तुम यहाँ से। किसको? बेटे को। दस्तरखान जब बिछा तो बेटे से कहा तुम निकल जाओ। तो आयतुल्ला जवाद आमली कहते हैं कि सबके जाने के बाद पूछा, आगा ये क्या बात हुई भी? ये भी आपका पार्ट ऑफ है ना, ये दस्तरखान बैतुल माल का है, इसमें बेटे का हक नहीं। सलावात पढ़िए। इट्स ए टफ लाइफ। और हमें धोखा दिया जाता है, धोखा दिया जाता है। मुझे लंदन में एक नौजवान आया, मौलाना आपसे इंटरव्यू लेना है, आई एम फ्रॉम BBC लंदन। मैंने कहा इस शर्त पे दूंगा कि तुम कटिंग नहीं करोगे, जो मैं बोलूँगा ओरल ले लेकर। मौलाना मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी एडिटिंग ना हो, अगर एडिटिंग नहीं होगी तो बोलूँगा। एक चीज मैंने उससे सवाल की, सबसे पहले बताओ ये BBC आया फ्री प्रेस है या अंडर द गवर्नमेंट? अब आइए, जो भी, जैसे आपको अल जजीरा का जैसे ही आता है नाम, नीचे से लिखते हैं कि फंडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना? क्या आप लोग देखते ना, क्यों लिख रहे हैं भैया फंडेड बाय कतर गवर्नमेंट? BBC को क्यों नहीं लिखते? आपको मालूम है BBC को सालाना कई मिलियन डॉलर्स हुकूमत की तरफ से मिलते हैं उस चैनल को चलाने के लिए। जब हुकूमत से मिलते हैं तो शराइत भी हुकूमत देती है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन अदा करो, तो मालूम हो इनडायरेक्टली पैसा दे रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। कोई प्रेस दुनिया में फ्री नहीं है। सलवार पढ़िए। तो भाई इसी बातें जब करूंगा तो कहां से रिले होगा, वो रिले ही नहीं हुआ जी। हकीकत आप लोग, हम लोगों को चाहिए कि दीनी मसाइल को प्रेजेंट डे एंड एज को सामने रखते हुए एनालाइज करें। दीन एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू फ्यू रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी। सलावत पढ़िए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि एहदना सिरातल मालिक, तू ही बता रास्ता। हम वीक हैं, हमें मालूम नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सही रास्ता बता। जो हमारे पास गर्दन पे फ़राइज़ हैं उसको अदा करने की तौफीक दे, और हम जो हैं जो हक है उसको पहचाने, अंधे ना बने। क्या मिला भाई ईरान से? कुछ मिल रहा है हम लोगों को? नहीं। मुझसे पूछते हैं मौलाना कुछ मिलता है? आप हमेशा ईरान कहते हैं। एक बहुत बड़े आलिम मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि मौलाना आपसे करीब होने को तबीयत चाहती है लेकिन आप ज़्यादा ईरान कहते हैं। मैंने कहा अच्छा। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि हमारे पास जब कोई नया आदमी आता था तो टेस्टिंग के लिए मौलाली के फजाइल शुरू करते थे। देखते थे उसके चेहरे को, ये हमारा है या कहीं और का है। मैं भी फिक्र की टेस्ट करता हूँ ईरान का जिक्र करके, इस्लाम को किस लेवल पे समझ लें। सलावत पढ़िए। मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्लाम को किस लेवल पे समझना चाहता है शख्स आया। रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज का नाम इस्लाम है, एक टोटल सिस्टम का नाम। और यूथ से मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग थोड़ा सा एनर्जी लीजिए, इंशाल्लाह इस मैदान में आइए। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दी स्पीकर्स, ये मेरी बात नहीं है, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का
1: अली ने बता दिया कि इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया कि शहादत किसे कहते हैं। अगर जंग की इजाजत मिली होती हसन से अब्बास को तो अब्बास बता देते कि कयामत किसे कहते हैं। नारे हैदरी।
0: आपने वो हजरत अब्बास का पढ़ा, मेरे से भी सुन लीजिए। अब्बास ने चराग वफाके जला दिया, अब्बास ने चराग वफाके, मुंह से नहीं अमल से सबूत वफा, मुंह से नहीं अमल

0: हद है कि मश्क भरने में जो हो गए थे तर, अब्बास ने उन हाथों को अपने
1: फरज।
0: अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे। वक्त हो रहा है, मैं इसको आगे कल बढ़ाएंगे, ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। खुलासा तीन दिन की मजालिस कर, करंट इशू हमारा सारे ह्यूमन बीइंग, सारे वर्ल्ड की फोकस्ड है मिडल ईस्ट पर, और मिडल ईस्ट की फोकस है एक ही कंट्री पर, वो है इस्लामी जमहूरिया ईरान, जिसने टोटल रिलीजन को पेश किया है दुनिया के सामने। रिलीजन सिर्फ ये नहीं कि आयश में मुब्तला हो जाओ, रिलीजन है जिसका हक है उसको दिया जाए, और जब तक ये हक नहीं देगा हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हमको तुम ख़त्म कर दो, लेकिन रिलीजन ख़त्म होने वाला नहीं है, इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं है। रहबर उम्मत ने दो जुमले कहे थे, तुम मुझे मार डालो, तुम ईरान को ख़त्म कर डालो, इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं है। इसी के बाद हज़ारों स्कॉलर्स, जब मुस्लिम स्कॉलर्स बदल गए, सिर्फ इस एक जो हकीकत, ये जुमला पैगंबराना जुमला है, कोई मामूली जुमला नहीं है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, दीन ये है, और इस दीन को जो टोटल सिस्टम है लाइफ में अप्लाई करना है। ये इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ कि ये ज़िंदगी तक हम लोग, इमाम के आने तक हम लोग ज़मीना फ़राहम करना है, प्रीफेज़ बनाना है, ताकि वो असल जो इनकलाब आने वाला है उसका साथ सारे इंसान दे सकेंगे। आज सारी दुनिया 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ विद द इस्लामी जमहूरिया ईरान, उनके माइंड्स, उनके हार्ट्स। क्यों? इसलिए कि ईरान इज़ रिप्रेजेंटिंग टोटल इस्लाम। किसी की हिम्मत नहीं थी गज़ा का जवाब दे सकें, गज़ा के मज़लूमीन का जवाब दे सकें। इस ईरान ने जिस तरह से गज़ा की हालत बनाई थी, उसी तरह से हालत बना करके इज़राइल की बता दिया कि देर इज पीपल दोज हु आर रेडी टू चलो आप। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम ज़माना की आज जुमा भी है, दिन भी इमाम का है, ज़ियारत नाहिया है, ज़ियारत नाहिया इमाम की है, जिसमें इमाम फरमाते हैं, ऐ मेरे जद, मैं आप पर दिन और रात रोता हूँ, आप पर मैं दिन और रात रोता हूँ। उसके बाद का जुमला है, अब मैं आंसू नहीं रोता अब मैं खून रोता हूँ। दुबई में कई साल गया हूँ, हुसैन जहरा में एक आलिम थे सादक अली शाह साहब क़िबला, उन्होंने शायद 25-30 साल खिदमतें जान दी। उन्होंने एक रिवायत पढ़ी, फिर उनसे मैंने इजाज़त ली, उस रिवायत को मैं दोहराऊं। करबला के वाक़े बाद इमाम सज्जाद के गिरिया से मुतालिक एक रिवायत हमने देखी कि इमाम जब रोते थे आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, खून निकलते थे। इस रिवायत को जब हमने किताब में पढ़ा, अपने दोस्त को साथ लेकर के, जो मुबाहसा मेरे क्लासमेट था उसको लेकर के आयतुल्लाह हकीम के पास पहुँचे, किताब हमने सामने रखी, मक्तल ये जुमला देखा, इमाम सज्जाद जब रोते थे आँखों से आंसू नहीं निकलते थे बल्कि खून निकलता था। जैसे हमने किताब को ये इबारत बताई, आगा मुनकलिब हो गया, ही वॉज डिस्टर्ब, बहुत बेचैन हुए, बहुत बेचैन हुए, बहुत ज़्यादा कर्म की हालत में उन्होंने जेब से रुमाल निकाला, कुछ नहीं कहा, आँखों को लगाया और जानों पे रखा। सादक अली शाह साहब कहते हैं, हम खुदा की कसम, हमने देखा दो खून के धब्बे थे, एक नायब इमाम सिर्फ सोचता है कि करबला में क्या गुजरी 1400 साल बाद।

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: Shabas, tumne hame halka samajh rakha hai. Mukhtar ke mukhalif kam nahi hai. Kufre mein uske mukhalifin uski nayi naveli hukumat ke liye bahut bada khatra hai. Use kufre ke tamam qabilon par musallat hone ke liye kafi waqt darkar hai. और फिर इब्ने मरजाना एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है हो सकता है इब्ने जुबैर भी आ जाए और जाहिर है मुख्तार को उनसे मुकाबला करने के लिए पहले कूफे के अंदरूनी हालात से मुतमईन होना होगा या तो उसे हम सबकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए जो कि नहीं कर सकता या फिर अपनी रंग-बिरंगी चालों के जरिए हमारा मुंह बंद कर दे
2: कैसे हमारी गर्दनें नहीं उड़ा सकता उसका दौर है वो जो चाहे कर सकता है
3: शबस जिस हुकूमत ने अभी ढंग से अपने कदम नहीं जमाए वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती अगर मुख्तार शुरू से ही कत्ल गारत गिरी से अपने हाथ लाल कर लेता तो लोग उससे डर जाते और उसे तन्हा छोड़ देते मुख्तार के पास और कोई चारेकार ही नहीं सिवाय उसके के लोगों से मोहब्बत और लोगों से रवादारी का नकाब अपने चेहरे पर रख ले
2: अब क्या करना चाहिए
1: कुछ ऐसा कि मुख्तार को सुकून की सांस लेने का मौका भी ना मिल सके हमें उस पर मुसलसल हमले करने होंगे ताकि वो चकरा जाए रुफा की तरह उसके करीब तरीन साथियों को शिकार करना होगा अब उमरा एक अच्छा शिकार है आजम हजरत मुख्तार की हुकूमत में काफी कुदरत रखते हैं खूब हम भी अपने छिने हुए हुकूक का मुतालबा करेंगे अरबों की हैसियत वापस मांगेंगे मुख्तार ने अजम गुलामों को अरबों के साथ मिला दिया है और सबको एक हुकूक देता है यह ख्वाहिश शबू उमरा और उसके लाव लश्कर को ठंडा कर सकती है मुख्तार अगर हमारी बैत को मोहतरम शुमार करता है तो उसे हमारी ख्वाहिश पूरी करनी होगी तुम हमारे इस पैगाम को मुख्तार तक पहुंचाने के लिए हमारे नुमाइंदे हो
2: अगर ना माने तो
1: अगर ना माने तो उससे लड़ेंगे
4: शबस अपने दोस्तों से कहो कि ये साजिशें न करें और हमारी दुश्मनी से दस्तबरदार हो जाएं। हम भी वादा करते हैं कि उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें और उनके जायाशुदा हुकूक को पूरा करें।
5: बिलाखिर अमीर ने अपनी असली नियत को जाहिर कर दिया।
6: मुख्तार अरब है मेहरान। अरब ने अजम के तकाबुल में अपनी कौम का दिफा किया है।
5: इसने तो मौला अली की तरह चलने का कहा था।
6: नहीं, मुख्तार ने कभी हमसे ये वादा नहीं किया था कि अरब और अजम को एक नजर से देखेगा। हमने ख्वामखा उम्मीद लगा ली थी। ये वो वादा था जो हमने खुद अपने आप को दे रखा था।
4: खड़े क्यों हो शबस? तुमने पैगाम पहुंचा दिया और जवाब भी सुन लिया। जा सकते हो।
2: खुदा के लिए मुझसे तो नाराजगी मत रखिए ना अमीर। मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मुर्दे नहलाने वाला हूं।
4: बदबख्त है वो मुर्दा जिसे तुझ जैसा नहलाए। इजाजत हो तो कुछ हुकूमती मामलात में मसरूफ हो सकते हैं।
2: क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपका इकबाल बुलंद हो, आप कायम दायम रहे हैं।

0: yan. Kian, तुम्हें मेरे जवाब से कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची?
1: मैं वही कयाम से पहले वाला कियान हूं। सियासत अमीर मेरे लिए अनोखी नहीं।
0: काश मैं अपने असरार को फाश कर सकता ताकि अपने जमीर के अजाब को झेलने पर मजबूर न रहता। काश तुम जानते कि अमीर मुख्तार ने मुख्तार के साथ क्या सलूक किया।
1: काश मैं अमीर मुख्तार के गमों को बांट सकता।
0: हमारी ईरानी साथी क्या खुसर पुसर कर रहे हैं?
1: लगता है अमीर के अदलो इंसाफ से ना उम्मीद हो गए। ये लोग समझ रहे हैं कि अमीर ने इन्हें धोखा दिया है।
0: इन लोगों से कहो फिक्रमंद ना हो, हम इनसे हैं और ये लोग हमसे। सियासत ने बाज़ औक़ात मीठे सवाल का मिठास से भरपूर जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। पत्थर का जवाब तलवार से दिया जाता है।
2: खुदा कबूल करे शेख, खुश आमदीद।

0: आप पे गुलाब बरसाओ। मैं जब शेख शाबाज को देखता हूँ मुझे मरोड़ हो जाते हैं, पता नहीं क्यों।
1: बकवास बंद कर फिटकार खाए हुए आदमी, खुदाया तेरी हिकमत ऊपर ताज्जुब है। ऐसी मखलूक को देखकर या इब्न ज़िल जोशन, तुमने फिर इस अधूरी और बेकार मखलूक को अपना तुम छल्ला बना लिया है ताकि लोगों का मजाक उड़ाए, तुम लोगों को मसखरा बन के हंसाता रहे।
0: शेख शाबाज, क्या वाकई अमीर मुख्तार ये चाहते हैं कि कातिलाने हुसैन से इंतकाम ले?
1: नहीं सरान, ये झूठ कभी सच नहीं हो पाएगा।
0: इब्न ज़िल जोशन, मैंने शेख शाबाज से पूछा है जो हमारे बुजुर्ग उलमा में से है, तुमसे नहीं जिसके पेट में एक भी सीधी आंत नहीं। शेख शाबाज जान, तुमने अमीर मुख्तार से मुलाकात की तो क्या जवाब मिला? वो हमें मार डालेगा या नहीं मारेगा?
1: सुन रहे हैं जनाब शेमर?
2: शरान, जब बर्दाश्त करने का दम नहीं है तो ज्यादा क्यों पीते हो?
0: तुम्हारी माँ की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिन अज्जाज, तुम बताओ शे, मैं बर्बाद हूँ या आबाद?
3: तुम हम सबसे ज्यादा आबाद हो शरान, खुश रहो। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अमीर मुख्तार के हत्ते ना चढ़ जाना, कहीं तुम पर हद ना जारी कर दे।
0: दुरूद हो फकीरों और भिखारियों के अमीर पर। झूठा इब्ने, झूठा अमीर।

छोड़ मुझे। जब तक पैर सलामत है मुख्तार की चौड़ी कमर की कसम, मैं हूं सनान इब्ने अनस, पीऊं शराब रोज दश, ताने कैसे मुझ पे सबस के तोड़ा क्यों मैंने कापस। सुनो सबस, करूं मैं क्यों बहस सबस, तोड़ा मैंने ये कापस।

0: कहो दिलावर, कहो जो कहना है।
1: अमीर, दुश्मन ने बिन हमला के मातहत एक 3,000 अफराद का लश्कर हमारी जानिब भेजा है, जिनमें बिन मखारिक के लुटे हुए लश्कर के भागे हुए अफराद भी शामिल हैं। वो लोग आज रात बना तेतल के करीब पहुंच जाएंगे।
0: सुना तुम लोगों ने भाइयों, कल हमारा एक और आखिरी इम्तिहान है।
2: सरदार, कल रोजे ईद कुर्बान है।
0: अच्छा है, शायद ईद की बरकत से हमें आसान फतह नसीब हो जाए। जाओ तैयारी करो कि हमें कल बहुत सारी कुर्बानियां पेश करनी है।

0: खुशखबरी लाया हूँ मुनीर, फतह की खुशखबरी। खुदा ने अपने सिपाहियों को बेहतरीन नीति से नवाजा है। शाम की फौज फरार कर रही है।
1: जनाब अमीर, अमीर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं?

0: मैंने चाहा कि सर जोड़ कर बैठे और मशवरा करें, क्योंकि खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद तकरीबन 40,000 अफराद का लश्कर लेकर हमारी तरफ आ रहा है, वो भी ऐसा लश्कर जो दो बार हमसे जख्म खा चुका है। मैं जंग को मजीद आगे बढ़ाने के हक में नहीं हूँ।
1: क्यों वरका, हमारा असली हदफ इब्ने ज़ियाद था।
0: हाँ, हम मरजाना के बेटे से लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, मगर इस वक्त हम 3,000 अफराद हैं और वो 40,000। और फिर इब्ने अनस की मौत ने फौज के वलवले को खराब कर दिया है। अगर इस सूरत हाल में हम दुश्मन से लड़ने जाएंगे तो हमारी शिकस्त हतमी है।
1: अगर लौट जाएं तो अमीर मुख्तार को क्या जवाब दें? हम अमीर से खतों की दावत करके उनसे इस बारे में हुक्म ले सकते हैं।
0: मुझे डर है कि अमीर का जवाब मिलने से पहले हम दुश्मन से टकरा ना जाएं। साकल, अगर हम दुश्मन के पहुंचने से पहले मैदान को छोड़ जाएं तो वो लोग समझेंगे कि हमने अपने सिपह सालार की मौत की वजह से मैदान छोड़ा है, और यूं उनके दिलों में हमारा रौब दबदबा बाकी रह जाएगा, क्योंकि हमने उन्हें दो बार शिकस्त दी है और उनके सरदारों को मार डाला है। लेकिन अगर रुक जाएं और खुदा न खास्ता हार जाएं तो हम पिछली कामयाबियों को भी बर्बाद कर बैठेंगे।
2: वरका के दलायल नहायत माकूल और दुरुस्त है साकल। इन हालात में हमारा पीछे हट जाना एक मजेदार फतह होगी। मेरे ख्याल से अक्सरियत वरका की इस बात से इत्तेफाक करते हैं।
3: मेरे मुताबिक भी अगर हम कूफा की तरफ लौट जाएं तो हम चारों तरफ से कामयाब हैं। अगर मरजाना के बेटे की लश्कर की तादाद सही है तो फिर हमें एक बड़ी तादाद के साथ इनसे लड़ने के लिए जाना होगा।
1: बहुत खूब। अब जबकि आप सभी कूफा लौटने पर मुत्तफिक हैं तो कोई बात नहीं, हम लौट जाते हैं। मगर मुझे यकीन है कि अमीर मुख्तार इस पर राजी ना होंगे।
0: क्यों राजी ना होंगे साकल? हमारा तो खुदा ना खास्ता नाफरमानी या दुश्मन को पीठ दिखाने का इरादा नहीं है। अगर इब्ने अनस की वसीयत पर अमल करें तो अभी सिपह सालार मैं हूँ, और इन हालात में मेरी राय यह है कि लौट जाएं।
1: जी हाँ, मैंने सिर्फ अपनी राय पेश की है। बेशक आपका हुक्म ही इस वक्त वाजिब है।

0: खुश आमदीद खुश खबरियाँ लाने वाले परिंदे, जंग की क्या खबरें हैं?
1: पढ़ो कातिब, हम भी सुने कि क्या लिखा हुआ है।
2: इस खत पर मखसूस मोहर है, ये राजदाराना खत है, इसे आपको खुद ही पढ़ना होगा।

0: भाइयों, अभी हमें इत्तला मिली है कि हमारे सिपाहियों ने एक हैरत अंगेज मुकाबले के बाद शामियों पर फतह पाकर लश्कर खुदा को फतह याब कर दिया है और ये सब बकरीद के दिन वाक़ हुआ है और उसी सबका मकाम पर यानी बनाते तर।
1: हमें अहमक समझता है, अगर खतरा दाराना था तो उसके मजमून को क्यों फाश किया? कामयाबी की खबर को छुपाकर तो नहीं भेजा जाता?
2: मेरे ख्याल से कूफा का लश्कर हार गया है।
0: इस राजदाराना खत में एक ऐसी खबर थी कि जिसने फतह की मिठास को जहर बना दिया। हमने अपने एक बेहतरीन साथी को गंवा दिया है। यजीद इब्न अनास इस दुनिया से चल बसा, खुदा उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बिन अदब शह

0: इब्राहिम, मदाइन के साबात में जब पहुंचो तो वहीं रुक जाना और बिन अनस के लश्कर का इंतजार करना कि वो तुमसे आ मिले। मैंने उन्हें लिखा है कि साबात में तुमसे आकर मिले।
1: अगर वो साबात हमसे पहले पहुंच चुके हो तो?
0: पहले पहुंच चुके हो तो क्या ही अच्छा है। साबात पहुंच जाओ तो मुझे खत लिखना और वहां से आगे मत बढ़ना जब तक कि तुम्हें मेरा खत न मिल जाए।
1: जो हुकुम अमीर।

0: आखिर तुम इतना हिर्स क्यों कर रही हो?
1: लश्करी शाम बहुत जल्द गुफा पहुंच जाएगा, फिर हमारे बच्चे क्या पत्थर खाएंगे?
0: तुम क्यों इन बातों पर भरोसा कर रही हो बेवकूफ कहीं की? शाम का लश्कर कहाँ और कूफा कहाँ?
2: मैंने इस टोले के झूठ को समझ लिया है, अच्छी तरह से माहिर, बड़े माहिर हैं कि जमीन को आसमान से मिला दें और ख्याली पुलाव पकाकर लोगों को अंधेरे में रखें। जो सुपेसलार एक वबाई मर्ज में गिरा हुआ है, जिस फौज का सरबराह खुद बीमार और कमजोर है, वो कैसे दुश्मन को दफा कर सकता है?
3: ओ खबीस, बकवास मत करो, लोगों को डराओ मत। जाइए अपने कामकाज पर तवज्जो दीजिए, जाइए इन मुनाफिकों की बातों पर ध्यान ना दें, जाइए।
2: ये देखिए, ये है इनकी मंतक। ए खुदा के निगेबान, आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि लोग हकीकत से गाफिल रहें? आप लोग अवाम को कायल क्यों नहीं करते? अगर शाम का लश्कर कूफा पहुंच जाए, जो कि बहुत जल्द पहुंच जाएगा, जानते हैं कितनी बड़ी मुसीबत पेश आएगी? खुदा की कसम वो लोग सब खत्म कर देंगे। खुदा की कसम कूफे की फौज हार चुकी है। यजीद इब्न अनस
4: सुपे सलारे लश्कर कूफा
2: मारा जा चुका है। कैसे इस बात को मान लें, कैसे मान लें कि 3,000 कूफियों का लश्कर शामियों पर फतह याब होगा?
3: बज़ाहिर तुम्हें जबान की बात समझ नहीं आती, दार शुरता में मुंह खोलोगे कि किन के चेले हो। चलो ले जाओ इसे, जाइए अपने अपने काम कीजिए।
2: अली की हुकूमत में सच बोलना कब जुर्म था?

0: खुदा करे ये सब झूठी हो।
1: क्या झूठ है क्या सच है?
2: झूठ है, यकीन मत कीजिए।
3: अगर झूठ है तो फिर मालिक अस्तर का बेटा क्यों गया है?
4: बिल्कुल झूठ भी नहीं है और बिल्कुल सच भी नहीं है।
5: झूठ और सच को खुदा पर छोड़े।
6: खाकम बदहन, अगर सच हुआ तो?
0: सच हुआ तो कूफियों का खाना खराब हो जाएगा।
7: शबाश, किस्मत हमारे साथ है। मुख्तार के हाथ में जो तलवार है वो एक खाली नियाम है। उसकी तलवार अश्तर के बेटे के पास थी जो कि चला गया। मैंने तमाम तर मुखालफिन से गुफ्तगू की है, सब मैदान में आने के लिए तैयार हैं।
8: इन सब बातों के बावजूद मैं ये मशवरा दूंगा कि इस शख्स की मक्कारी से गाफिल ना रहिएगा। मुख्तार वो आदमी नहीं है जो बगैर सोचे समझे कदम उठाए।
7: उठा लिया है कदम बगैर सोचे समझे। बज़ाहिर बिन अनस की शिकस्त ने उसके जहन को कुंद कर दिया है। झूठ पर झूठ, गलती पर गलती। उसकी सबसे बड़ी गलती अरब और अजम सिपाहियों को एक जैसे हुकूक, तनख्वाहें और मराद देना है। बहुत से मुख्तार के तरफदार कबाइल भी इस हरकत के मुखालिफ हैं। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही वो लोग हमारी आवाज सुनेंगे यमनियों की तरह मैदान में उतर आएंगे। क्या तुम्हें पता है रुफा, इब्ने शद्दाद यमनियों का पेश इमाम बन गया है?
8: हाँ, मैंने भी ये सुना है।
9: हम सब शिम्र की राय से मुत्तफिक हैं। अब वो वक्त आ गया है क्या मुख्तार पर एक कारी जर्ब लगाकर कूफे को उसकी वहशत से निजात दिला दें। खुदा की कसम में बड़ी मुद्दतों से सुकून की नींद नहीं सो सका हूं। भला ये भी कोई जिंदगी हुई? एक सर फिरे अरब ने हमारे नौकरों को हम पर शेर बना दी। अब तो हम अपने गुलामों पर शिद्दत से भी बर्ताव नहीं कर सकते। ये बात कहां लिखी है शरीयत मोहम्मदी में के गुलामों को अपने आकाओं का जुल्म तशद्दुद भी नहीं मिलना चाहिए?
10: मुझे गुमान है कि इब्राहिम के जाने से हमारे मुखालिफीन हंगामा आराई करेंगे।
11: गुमान न करें अमीर, हंगामा आराई हतमी है। हमारे जासूस तमाम तर मुखालिफीन की हरकत और सकनात को देख रहे हैं। रुफा इब्ने शद्दाद यमनियों के साथ एक तरफ से और शिमर और सबस का लाओ लश्कर दूसरी तरफ से।
12: ताज्जुब है, रुफा क्यों?
10: जंगे जमल को याद करोगे तो तुम्हारे क्यों का जवाब मिल जाएगा। रुफा का मामला बिल्कुल तलहा और जुबैर की मानिंद है।
11: काश आप इब्राहिम को भेजने का फैसला चंद दिनों के लिए मुलतवी कर देते अमीर।
10: उससे क्या होता कियान?
11: हंगामा आराई का खतरा टल जाता। हमें चंद रोज की मोहलत चाहिए ताकि साजिशी अनासर के बड़ों को कैद कर सके।
10: हम उन्हें कैद कर लें इस जुर्म में कि वो हंगामा आराई का इरादा रखते हैं? नहीं कियान, ये रविश हमारी अदल का नारा लगाने वाली हुकूमत के शाह निशान नहीं। मैं कातिलाने हुसैन से कसास लेने के लिए किसी बहाने की तलाश में था ताकि हमारी हुकूमत का मुनसिफाना भरम आवाम की नजर में कायम रहे। शरीयत मुकद्दस ने गुनाहगारों को तौबा करने की गुंजाइश दे रखी है और मैं ये जानता हूं कि स्टोले ने हमारे इंतकाम की तेज तलवारों के खौफ से तौबा की है। तो कुछ ऐसा करूं कि उनकी नजिस तनियत खुलकर सबके सामने आ जाए। खुदा की कसम, अगर उन लोगों ने तलवार खींचकर कयाम कर लिया तो अपनी जिल्लत और मौत के दिन को बहुत करीब ले आएंगे।
11: इब्राहिम के जाने के बाद हम इन थोड़े से सिपाहियों के साथ इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अगर हम बरहक हैं तो खुदा इन खारदार रास्तों से बचकर गुजरने की राह में जरूर दिखाएगा। बिन कामिल, दारुशुरता के सुस्त और मशकूक सिपाहियों को छोटे मोटे कामों पर मुकर्रर कर दो और मुमकिन हंगामे से निपटने के लिए कयाम के तरफदार सिपाहियों को मुकर्रर कर दो। कियान, तुम ईरानियों में से कुछ नए मख्फी सिपाही तैयार करो। खुदा ने चाहा तो आज किया कि जिल्लत और ख्वारी का दिन करीब।
13: ये घर है बेटा।
14: ये जगह तो घर ऐसी नहीं है, झूठी।
13: तुमने फिर बुरी बात की। ये महल है।

0: वनम
1: नहीं, सिर्फ इब्राहिम की जौजा नहीं मान रही थी, जब शिमर का किस्सा उसे सुनाया तो राजी हो गई।
0: शिमर का किस्सा
1: आपको खबर नहीं मिली?
0: कौन सी खबर, कैसा किस्सा?
1: आपका शक ठीक था अमीर, मगरिब की अजान के बाद शिमर ने आपके घर पे हमला किया

0: me oskak piima pana tuka.
1: मुझे पता था कि ये भेड़ी जैसे ही कचार को शेर से खाली देखेंगे फौरन पंजे दिखाना शुरू कर देंगे। अब उनके साथ बहुत बुरा होगा।

0: माफ कीजिएगा दुम्मा, मुझे इन सब से पहले दस्तबोसी के लिए हाजिर होना चाहिए था। कयाम के बाद से एक रात भी पुरसुकून नींद करना मेरी हसरत बनकर रह गई। इस कदर काम काज थे कि हाथ पांव कट कर रह गए।
1: खुदा तुम्हें मजीद हौसला और हिम्मत दे मेरी बेटी। मेरे बेटे इब्राहिम की कमी तो बहुत महसूस होती होगी।
0: मुख्तार और इब्राहिम की दास्तान चांद और सूरज की तरह है, अगर ये दोनों ना हो तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि आंखें बंद करके सितारे गिनती रहूं।
2: क्या ये जरूरी है कि खतरनाक रातें तो ही हम एक दूसरे को देखें?
3: तुमने तो लफका छोड़ दिया है, कूफा में नारिया ढंग से बात नहीं करती। अब मैं कहाँ आऊँ तुमसे मिलने?
2: हक बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। कैसी हो?
3: आज फिर तुम्हारी सौकन के तेवर बिगड़े हुए हैं। खुदा तुम्हें सब्र दे उम्रा, मैं तो हैरान हूँ तुम नारिया को कैसे झेलती हो।
0: आग मत लगाओ लड़की, ये लोग कौन है अबू मुफलिस?
4: यकीनन सरकारी आला अफसरान के अहलखाना हूँ।
0: खूब, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं?
4: जहाँ तक आपका नौकर जानता है, मुमकिन शरंगेजी का खतरा टल जाने तक महल ही में रहेंगे।
0: कैसी शरंगेजी?
4: मतलब आप नहीं जानती?
0: सिर्फ ये नहीं कि मैं नहीं जानती, मैं इंसानों के फेरिस्ट में ही नहीं हूँ। तमाम खबरें हमेशा ही मुझे बदली हुई मिलती हैं।
4: जहाँ तक मैं जानता हूँ, अमीर मुख्तार के तमाम मुखालफीन आपस में मुत्तहिद हो गए हैं और वो उनसे जंग का इरादा रखते हैं।
0: हाय मेरे खुदा, उम्रा माफ कीजिएगा श्री साहिबा, इतना उम्रा तुम्हें ये पता था और तुमने मुझे जिक्र तक नहीं किया?
2: मैंने किसी इसका जिक्र नहीं किया।
0: शाबाश, ये तरीका नहीं होता उम्रा।
2: तुमने फिर कोई ख्याली पुलाव पका लिया है नारिया, क्या हुआ है ऐसा?
0: तय पाया था कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे।
2: मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मगर तुम्हारा नहीं पता।
0: क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि हमें महल में कैद कर लिया जाएगा? तुम्हें मालूम नहीं था कि हमें इतनी सारी औरतों के बीच में रहना होगा?
2: क्यों नहीं, मुझे पता था।
0: तो मुझे क्यों नहीं बताया?
2: क्योंकि तुम सुनने को तैयार ना थी मलका आलिया। महल के दरो दीवार में तुम इतना खो गई थी कि कुछ भी नहीं सुन रही थी।
0: हाय कितनी बदकिस्मत हो तुम नारिया, महल में आकर फंस गई।
5: अस्सलाम वालेकुम। खुदा कबूल करे।
6: खुदा कबूल करे।
5: जनाब रफा, मुझे मानना ही पड़ेगा कि आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी व खुशू वाली नमाज पढ़ी है। इस अच्छाई के लिए खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। आज रात हमारा जमा होना काफिरों के कत्ल के लिए है। काश तुम्हारे साबका दोस्त कुछ बसीरत रखते और मुसलमानों के दरमियान तफरुकेबाजी ना करते।
6: मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता इब्ने ज़िल जोशन। जिस दिन से मैंने ये सुना है कि तुम शैतीन ने दश्त करबला में फर्जंद रसूल के साथ क्या किया है, उस दिन से मेरी तुम लोगों का खून बहाने के अलावा और कोई तमन्ना न थी। खुदा मुआफ न करे मुख्तार को कि उसने खून हुसैन का इंतकाम चाहने वालों के साथ नाइंसाफी की और मुझ जैसे को तुम जैसों की सफ में खड़ा कर दिया। खूब, ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी तमन्नाएं दिल की हसरत बनकर ही रह गईं। जना

0: मुझे कोई गिला नहीं है मेरे बच्चे, मुझे भी बिलाखिर ना चाहते हुए चंद दिनों के लिए कैद खाने का मजा चखने दो।
1: कितनी सच्ची ताबीर है राहिला बानू। मैंने सुना कि आप आने पर राजी न थी, हक पर आपसे यही तवक्को की जा सकती है कि आप महल में रहने पर रगबत न रखती हैं। अगर दुश्मन की खबीसाना तनियत न होती तो मैं जोर जबरदस्ती न करता।
2: अमीर, मेरा राजी ना होना लोगों की बातों के डर से था। मुझे डर था कि दुश्मन हमारे महल में रहने को फितने का बहाना बना ले।
1: मरहबा, बेशक आप जैसी बुलंद तबीयत वाली औरत इब्राहिम जैसे एक बड़े सरदार की हमसरी के लायक। मरहबा अबू मुफलिस।
3: जी अमीर।
1: मेहमानों की उनकी रिहाइश गाहों में पजीराई की जाए। आप लोग चलिए,
3: तशरीफ लाइए।
1: शीनी बानू, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था।
4: जी फरमाइए अमीर।
1: अगर कभी उम्मे साबित से कोई तकलीफ दे बात सुन ले तो उसे माफ कर दीजिएगा, कहीं बुरा न मान जाना। मैं और क्या अनसारों से उसकी जबान के जख्मों के आदि हो गए हैं।
4: आप बेफिक्र रहिए अमीर, कोई भी अमीर मुख्तार को मेरे और क्यान के दिल से निकालने की ताकत नहीं रखता। और फिर बानो उम्रा भी तो है, नारिया की जबान की तलखियों को बानो उम्रा की मिठास धो डालेगी।
1: मरहबा, बहुत खूब। यह हमारा छोटा क्यान आखिर कब अपने बाबा की तरह बहादुर जवान बनकर जंग लड़ेगा?
4: गुलाम है आपका अमीर।

वो अपने आप को बचाता हुआ जिंदगी को बसर कर कि मेरा हाथ है लेकिन गवाही मेरे खिलाफ देगा, ये मेरी आंख है ये मेरे खिलाफ बोलेगी, ये मेरी जबान है मेरे खिलाफ बोलेगी, ये मेरे पैर है मेरे खिलाफ गवाही देंगे। अगर ये तसव्वुर मेरी जिंदगी में आ जाए तो बेदारी आएगी या नहीं आएगी? लेकिन गफलत की नींद को कौन संभाले? खुदा का ऐलान है सूरे अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा आयत का निशान है, एक चैप्टर 21 वर्स नंबर 1 ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक्तरबा लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, लोगों का हिसाब किताब नज़दीक आ गया है लेकिन वो गफलत की नींद में सो रहे हैं। ऐ बंदगाने खुदा, खुदा ने कह दिया है वकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे हमें सवाल करने हैं, इनसे हमें इनकी जिम्मेदारी का पूछना है कि क्या जो हमने कहा था क्या उसको उन्होंने अंजाम दिया या नहीं। हाथ आ गए, पैर आ गए, जबान आ गई, क्या रह गया? पिछली साल पढ़ा था, सलवात पढ़ाता हूं आप हजरात याद रखिएगा, हबीब में पढ़ा था, एक चीज अभी बाकी है, कुरान ने उसकी गवाही, आपको याद है जावेद भाई? सलवात पढ़ाओ तो उसकी बरकत से याद आ जाएगा, वरना उतर के मारूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हाँ पता है क्या होगा कयामत के दिन इंशाअल्लाह, हाल आपका हाल ही, वहां जाकर हमें चुभ होगा कि ये क्या हो गया, मैं अपने आप को समझता था और मुझे कौन में अल्लाह सुबहान व तआला। सूरह काफ आयत का निशान है 49 चैप्टर 18 वर्स नंबर 49, वहां पर लोगों कहेंगे या वैलतना माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, अरे वाई हो हम पर, अफसोस हो हम पर, इस किताब को क्या हो गया? कौन सी किताब? मेरे अमाल नामे की किताब। या वैलतना, वो आयत सही है, मिल गई आपको 1849 जी? हा क्या? हा नहीं, सूरा नंबर 18 वर्स नंबर 49, हाँ अर्दे थी या वही लता ना, अरे अफसोस हो हम पर, माले हजर किताब, ये मेरे अमाल नामे को क्या हो गया? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, अरे इस किताब में कोई ऐसी चीज नहीं जो इसने छोड़ी हो, ला सगीरा वला कबीरा, ना कोई छोटी चीज इन्होंने छोड़ी ना कोई बड़ी चीज, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। मैं तो समझता था कि ये तो छोटा मोटा गुनाह है कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुझे तो समझा गया है क्या, रोको मत, जाने दो, खुदा ने कहा कोई जाने नहीं दूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो हाथ पैर जबान नफ्स सब आ गया, इसका शायद आपको ख्याल भी नहीं होगा। मैंने जब पिछले साल होगा या दो साल पहले होगा हबीब ट्रस्ट में जब आया था तभी आयत को मैंने पढ़ी थी, और मुझे पता है जब भी इस आयत को पढ़ता हूँ लोग कहते हैं मौलाना ये तो हमारी नज़रों से आयत गुजरी ही नहीं। अरे भाई कहाँ से गुजरे, तू कुरान पढ़ तो गुजरे ना, कुरान को तू खोल तो नज़रों से गुजरे ना। अल्लाह सुबहान व तआला ने सूरह फुस्सिलत कुरान मजीद के 41वां सूरा आयत का निशान है 21 चैप्टर 41 वर्स नंबर 21, वहां पर ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शय, लोग अपनी चमड़ियों को कहेंगे, पढ़ा था ना खाल को स्किन

ये स्किन पे भी दुनिया में बड़ी बड़ी नाज होती है और हमें भी है, ये सब में मैंने पढ़ा है, अभी टाइम है। कहते सबसे अच्छी चमड़ी जो है, आपको एक सलवात पढ़ना पड़ेगी, इसके बाद अभी नहीं। हमारे यहाँ यूरोप में ये मशहूर है कि दुनिया की सबसे अच्छी चमड़ी और सबसे अच्छा रंग जिस चमड़ी का होता है वो हिंदुस्तान वाले को होता है। सलवात पढ़ो, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये मिल्क वाली कॉफी का रंग है, हिंदुस्तान वाले का चमड़ी। खुदा ने क्या कहा, जब ये चमड़ी खाल, चमड़ी बोलते हैं उर्दू में, खाल और कुछ स्किन इंग्लिश में, आ गए ना सब अल्फाज आ गए, गुजराती मा चामड़ी, उर्दू मा खाल, इंग्लिश मा स्किन, सब के सब अल्फाज आ गए जो हमें आते हैं, का लोग अपनी चमड़ियों से कहेंगे कालुल जुलूदहिम लिमा शहीद तुम अलैना, अरे तुमने भी हमारे खिलाफ गवाही दे दी। तो चमड़ियां जवाब देगी अंतकन अल्लाहु लदी अंतक कुल शय, तो ये चमड़ी जवाब देगी कि खुदा ने हमने नुत्क दिया है, वो जिसे भी चाहता है उसे नुत्क अता कर सकता है। ऐ मुसलमान बेदार हो जा, वकिफूहुम इन्नहुम मसूलून, सबको रोका जाएगा, सबसे सवाल पूछा जाएगा। और इन सब के लिए कल जुमेरात थी, हमने मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम, एक और सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, नहीं ये छोड़िए, इसमें उतरता है फोन को क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सल वाला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो मजलिस ने लिखी हुई फोन में, यहां मैं देख रहा हूं कितनी मिनट हुई है, देखो हुई है कितनी हुई है, बोलिए बोलिए कितनी हुई है, कितनी हुई है, ये नहीं दिखता कितनी मिनट हुई है, हाँ अभी 53 मिनट हुई है, मुझे 1 घंटा 10 मिनट पढ़ने को कहा है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, दुआए कुमेल हर जुमेरात को पढ़ता हूं, पढ़वाता हूं। और यहां भी अजीब सी बात है, दुआए कुमेल हर मेरी हर जिक्र के अंदर यही है कि दुआए कुमेल पढ़े वो और फायदा मुझे होवे, ऐसे हो सकता है भाई? मैं बस सुनूं, समझू भी ना क्या पढ़े जा रहा है। बेदार हो जा मुसलमान, वेक अप, ज्यारती जाएगा त्यारती सवार। तू देख तो सही, जिस दुआए कुमेल का जिक्र तू हर जुमेरात को करता है, वहां पर तेरे मौला ने तुझे क्या सिखाया है, क्या पैगाम दिया है। उसी दुआए कुमेल में मौलाए कायनात ने कहा, ऐ मेरे पालनहार, वकुल सैयतिन अमरता बे इस्बात अल किराम अल कातिबीन, हर गुनाह तूने किराम अल कातिबीन को कह दिया है ये सबको लिख डालना, वकुल सैयतिन अमरता बे इस्बात अल किराम अल कातिबीन الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اخفيت وبفضلك سترت اے میرے پروردگار تو نے تیرے کرام الکاتبین کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ مجھ سے جو بھی کام ہوگا وہ لکھ ڈالے گا और अगर वो न देख पाए तो तुझे तो सब पता है, मा खफिया अनहुम, लेकिन ये तो तेरी रहमत थी, वो भी रहमत के अखफई था, तेरी रहमत का ये तकाजा था कि मेरी बुराइयों को तूने छुपा दिया, वो भी फजल का सतर था, ये उसके बाद है कि मेरी बुराइयों को तेरे फजल करम से तूने

एक जगह डाल दी, ऐ मुसलमान वक़िफूहुम इन्नहुम मसूलून। खुदावंद करीम अब सबसे सवाल करेगा, ये खुदा का दस्तूर है, दीन बगैर जिम्मेदारी के नहीं हो सकती। हाँ, कुछ ऐसी जिम्मेदारी है कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम निभा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हमारे पास है, बाकी के जवाब हमारे पास होंगे या नहीं, अल्लाह आलम। आज मसायब में कुछ ऐसी चीज पढ़नी है कि जिसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमसे सवाल नहीं किया जाएगा, इंशाअल्लाह। करबला का ये काफिला जब उन्हें लूट कर कूफा और शाम में ले जाया गया, तारिक के अल्फाज है, एक मौका वो आता है कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में नबी करीम के ज़माने का एक बूढ़ा सहाबी हाजिर है जिसका नाम तारिक ने ज़ैद इब्ने अरकम लिखा है। कौन? ज़ैद इब्ने अरकम। ज़ैद इब्ने अरकम कहता है कि मैं इब्ने ज़ियाद के दरबार में था, उसी असना में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इब्ने ज़ियाद अपने तख्त पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक तश्त पड़ा हुआ था और उस तश्त में हुसैन मज़लूम का कटा हुआ सर था। ये नबी के ज़माने का सहाबी है। उस तश्त में हुसैन मज़लूम का कटा हुआ सर था और इस जालिम इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। उस छड़ी से इब्ने ज़ियाद हुसैन मज़लूम के लबों को चीर रहा था। जब मैंने ये देखा, ज़ैद इब्ने अरकम कहता है, जब मैंने ये देखा तो मैं रोने लगा। इब्ने ज़ियाद ने मुझसे पूछा, कहा या शेख मायूब की, कहा ऐ ज़ईफ तू क्यों रो रहा है? ज़ैद इब्ने अरकम कहता कि मैंने इब्ने ज़ियाद को जवाब दिया और मैंने कहा ऐ बदबख्त, आज तू जिस होठों को चीर रहा है, एक ज़माना था मैंने अपनी नज़रों से देखा है कि इसी नबी करीम के ज़माने में इसी नबी लबों को हुसैन मज़लूम के लब को नबी करीम चूमा करते थे और चूम के कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हुसैन, ऐ मेरे परवरदिगार मैं इस हुसैन से खूब मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे पाने वाले अरे तू भी हुसैन से मोहब्बत। अज़ादारो, नबी करीम को आपको पता है ये नवासा कितना प्यारा था, मैंने उलमाए किराम से सुना है और अगर न भी सुना हो तो एक ऐसी रिवायत है कि जो इंसान की फितरत के हवाले हो सकती है। तारीख ने ये लिखा है कि नबी करीम अपने अस्हाब के साथ मदीने के किसी गली में से गुजर रहे थे, इतने में नबी करीम के कान में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। नबी करीम रुक गए, सहाबियों को कहा थोड़ा रुक जाइए, जिस घर से रोने की आवाज़ आती थी वहाँ दक्कुल बाब किया। साहिब खाना बाहर आया, कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे घर पे आए हैं? कहा तेरे घर पे नहीं आया हूँ। कहा या रसूल अल्लाह कोई खिदमत? कहा हाँ, जब इस घर से मैं गुजरा एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ मेरे कानों में आई तेरे घर से, अरे इस बच्चे की रोने की आवाज मेरे हुसैन जैसी है, मैं हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं करता, ऐ मेरे साहबी इस बच्चे को मत रुलाना। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन क़ल्बी यन्क़लिबून إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسين.

इसने इनकी दुश्मनी रखी, उसने मोहब्बत, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये महबूब खुदा हैं, खलील खुदा हैं, व नजीब है। ये मैं मुकम्मल करूँगा आज कि नजीब, नजीब कहते हैं चुना हुआ, जिससे मुजतबा भी है, मुजतबा इज्तबाद। अल्लाह ने दीन के लिए भी कहा ना कि दीन को अल्लाह ने चुन लिया है, जिसे अल्लाह चुन ले जो नजीब, वो कहते हैं ख़ानदानी है, यानी चुना हुआ है। अब यहाँ पे इमाम मासूम फरमा रहे हैं हुसैन अल्लाह के बरगुजीदा, ही इज़ द चोज़न वन। तो अब यहाँ इज्तबा हो, नजीबे, ये जो जगह जगह अल्फाज आए हैं, व नजीबे खलीलिल्लाह व नजीबे, जिनको अल्लाह ने चुन लिया हो, यानी जिसकी, जिनका सारा ख़ानदान चुना हुआ है, ख़ानदानी आदमी। दुनिया में कौन सा ऐसा और रिश्ता होगा जहाँ नाना रसूलुल्लाह हो, नानी खदीजतुल कुबरा हो, बाबा अली मुर्तज़ा हो, माँ फातिमतु ज़हरा हो, एक भाई हसन हो, दूसरा अब्बास, जहाँ चचा जाफर तैयार और हमजा, पता नहीं लोग हैं या नहीं, खानदान। अल्लामा इकबाल ने फारसी में कहा ना कि अगर तुझे अपने खानदान पे नाज है, निगाह बे खानदान ने

माँ सैयदतुन्निसा, भाई सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। जहाँ सारे सरदारों वहाँ एक हुसैन आए और आने के बाद कहे नाना आपकी रिसालत मैं बचाऊंगा, बाबा आपकी विलायत मैं बचाऊंगा, ए मादरे गिरामी आपकी इस्मत का मैं दिफा करूंगा, ए मेरे भाई हसन आपका बदी, लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, ये सारी की सारी अकायद को बचाने वाली हस्ती हुसैन इब्ने अली है, इसलिए नजीब हैं, नजीब हैं। मैं 5 से 10 मिनट और लूंगा बहुत माजरत के साथ। अस्सलाम अला सफीय्यल्लाह वबन सफीय्यह, ये मोहम्मद भाई ये जारी रखो ना, अभी भाई इन्हें बाद में पकड़ लीजिएगा, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, परवरदिगारन की हिफाजत फरमाया, कह रहे थे मौलाना साहब सब लोग पॉजिटिव है, कह रहे हैं कि बेशक टाइम बढ़ा दें। सफी आए, मेरी दरख्वास्त है इस लफ्ज़ पे गौर कर लीजिए, आप ज़ियारत वारिस में पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या वारिस आदमा सफवतुल्लाह, सफवत सफी ये सारे रूट वर्ड एक है, स्वाद फे ये सफी। सफवत किसे कहा जाता है, जब आप दूध को उबालते हैं ना ऊपर क्रीम आ जाती है, उस क्रीम को कहते हैं सफवत। अंग्रेजी में कहा जाता है क्रीम ऑफ द क्रॉप, जो बेहतरीन शय होती है वो क्रीम होती है, मुआशरे की क्रीम। मैं नहीं पहुंचा पा रहा, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है तवज्जो कीजिएगा। ऐजाने गिरामी अल्लाह फरमा रहा है कामिल ज़ियारात में रिवायत है छठे इमाम से, दुनिया में सबसे ज्यादा मखलूकात फरिश्ते हैं, द लार्जेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह आर द एंजल्स, यस सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, इतने स्टार्स नहीं है जितने फरिश्ते हैं। आप लोग परेशान होंगे जैसे मैं आपसे सबके नाम पूछूंगा अभी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फरिश्ते, फरिश्ते बहुत ज्यादा हैं, बिलियंस नहीं है, बिलियंस तो 8 बिलियन तो इंसान है, ट्रिलियंस के हिसाब से स्टार्स हैं, फिर आगे उनके पूरे प्लैनेट्स हैं, निजाम हैं। वो कहते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में समंदरों के बारिश के कतरे इतने नहीं हैं, रेगिस्तान के जर्रात इतने नहीं हैं, दरख्तों के पत्ते इतने नहीं हैं जितने पूरी दुनिया के अंदर फरिश्ते हैं। अभी भी सारे मजमे की तवज्जो नहीं है। अब सारे फरिश्तों के सामने अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। और किसके लिए कहा, जनाब आदम के लिए। जाने गिरामी आगे है ना आयात के अंदर, ये तो सूरह बकरा से मैंने भी पढ़ा लेकिन सूरह आराफ में और जगह पे भी वाकया मुतअद्दिद मर्तबा कुरान करीम में आया, अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। फरिश्तों ने क्या कहा, अच्छा जअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दमा व नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका व नुक़द्दिसु लक, क्या तू इंसानों में से फरिश्ता बनाएगा जो जमीन में फसाद भी करेगा खून भी बहाएगा। इंसान तो खून बहाने वाले, फसाद करने वाले, सारे अफराद तो हमारे जैसे नहीं होते ना, बाकी डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी बहुत होते हैं। चलिए ये काट दीजिएगा भाई, अगर ज्यादा परेशानी हो रही है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप का नाम काट दीजिएगा। तो जाने की रामी, अब ये देखे ना हर तरह के लोग हैं दुनिया भर में, जालिम भी हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही इतना खराब हो गया कि वैसे दो तो लोग गाली समझने लगे हैं, कोई समझते नहीं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, लोग समझते नहीं गाली निकाली है। तो अभी जाने की रामी थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए, तब इतने फरिश्ते, फरिश्तों ने कहा हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं, हम में से चुन लेता, ये इंसानों में से तू आदम को क्यों फरिश्ता बना रहा। तो अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सारे फरिश्तों के सामने अल्लाह ने जिसे चुना वो है जनाब आदम, वो कहलाए सफीउल्लाह। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार हम में से बना दे, अल्लाह ने कहा नहीं मुझे तुम में से नहीं बनाना, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो ऐजाने गिरामी वो अल्लाह जिसे बेगुनाह बेखता फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, पहुंच गए ऐजाने गिरामी, वो अल्लाह जिसे बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कंसेंसस कबूल ना हो, उसे सकीफा के गुनहगारों का। तवज्जो फरमा रहे जाने गिरामी, वो अल्लाह जो फरिश्तों का इजमा कबूल नहीं कर रहा, वो सकीफा के गुनहगारों का इजमा कैसे कबूल करेगा। तो खिलाफत का फैसला इजमा से नहीं होता, अल्लाह की मर्जी से होता है। भाई अब सारे मजमे की तवज्जो, अब सारे फरिश्तों में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने कहा देखो सफी है आदम। अब यहां पर छठे इमाम फरमा रहे अस्सलाम अला सफी।

बाजू जनाबे जैनब ने पकड़ा, दूसरा मौला सज्जाद ने। जैसे ही जनाबे रबाब को उठाया ना जमीन से, बीबी ने हाथों को बुलंद किया, हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगारा मेरे वादे की लाज रख ले, मैं साए में नहीं जाऊंगी, मैंने तेरे हुसैन से वादा किया था। मौला सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा मेरी माँ को लिटा दे, मेरी माँ की रूह परवाज कर गई। मैं एक सवाल करूं आपसे, मैं ये पता नहीं जुमला पढ़ू ना पढ़ू, ये मैं अरबईन वाले दिन दोबारा पढ़ दूंगा। जानते हैं जब चहलुम से बीबी वापस आ रही थी तो मौला सज्जाद ने पूछा था, मादरे गिरामी क्या बात है, आप तैयार क्यों नहीं हैं? कहा बेटा सज्जाद, जब कोई बेवा घर जाती है ना तो शोहर की निशानियां साथ लेके जाती है। ऐ सैयद सज्जाद, मेरा अली असगर करबला में रह गया, मेरी बेटी शाम में रह गई। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ। बस भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा। जब जनाब मुख्तार ने पूछा था ना अबू खलीक से, अबू खलीक तू बता मैदान करबला में कभी रोना आया? उसने कहा हाँ, जब हुसैन एक बच्चा लाए थे तो मैं तो क्या सारी फौज रो रही थी। तो जनाब मुख्तार ना जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो जनाब मुख्तार को बताया अबू खलीक ने, कहा हुसैन बच्चे का लाशा हाथ में लेके कभी 7 कदम आगे लेते थे, 7 कदम पीछे लेते थे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिकज़ाही व तस्लीमन लिअम्रे। जनाब मुख्तार कहते हैं मेरा दिल कहता है मौला सोचते होंगे मैं रबाब को क्या बताऊंगा, मैं अली असगर की माँ को क्या बताऊंगा कैसा पानी पिलाया है। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज्जत जलाल का साहिब उस जमान के जहूर में ताजील फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, दहशतगर्दी का खात्मा फरमा। परवरदिगारा ईरान इराक शाम के रौज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा गजा में, लबनान में, शाम में, फ़िलिस्तीन में, ईरान इराक में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, अफ्रीका के ममालिक में हालात ख़राब है, सब की हिफाजत फरमा। ईरान को फतह नुसरत नसीब फरमा। परवरदिगारा दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा। जन्नतुल बकी जन्नत माला दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। इस इमाम मरगा को तरक्की इनायत फरमा। खिदमत करने वालों की तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनात के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज व ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारात नसीब फरमा। हमारे तमाम ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल, परवरदिगारा तमाम मरीजों को सेहत कामला अजलाना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम बिहक मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।

0: 4 फरवरी 1979 के दिन वक्त बाद अज़्ज़ोहर इमाम की जिला वतनी से वापसी के 2 दिन बाद मजलिस शूराए इनकलाब 6 घंटे की मुसलसल गुफ्तगू के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि तहरीक आज़ादी के सदर महदी बाजरगान को अबूरी हुकूमत का सरबराह ऐलान किया जाए। इमाम खुमैनी ने बाजरगान की सरबराही पर मशरूत रजाइत नामा जारी कर दिया।
1: जनाब आली को किसी खास गिरोह के साथ वाबस्तगी ना रखने की शर्त के साथ उबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए बाउनवान सरबरा तैनात करता हूँ।
0: इंजीनियर बाजरगान 4 फरवरी 1979 को उबूरी हुकूमत का सरबराह बन गया और 6 दिन बाद इनकलाब कामयाब हो गया। बाजरगान अपने मशरूत वादे से बहुत जल्द मुनकिर हो गया।
2: जबहे मिली और तहरीक आज़ादी के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते थे।

0: के अंदर मजहबी लोग भी थे, कम्युनिस्ट, कौमियत परस्त और बैरूनी ममालिक के एजेंट भी थे। इन लोगों की बातों से उनके दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हत्ता शाहपुर बख्तियार के जो शाही हुकूमत में वजीर आजम रह चुका था, वो भी जबहे मिल्ली का रुकन था। इनकलाब ने मजहबी लोगों और कौम परस्तों के लिए सल्तनती निज़ाम से नजात के लिए एक अच्छा मौका फराहम किया था। इमाम खुमैनी ने बड़े बड़े इकदाम किए जिनसे कुछ लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, दूसरों ने भी इसे अपने वजूद का इजहार करने के लिए बेहतरीन मौका जाना।
1: बाजरगान ने अपनी काबीना में सिर्फ तहरीक आज़ादी और जबहे मिली के अराकीन को शामिल किया और उल्मा में से किसी के वजीर बनने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। तमाम सरकारी और इंतजामी महकमों को अपने और अपने साथियों के इख्तियार में दे दिया।
2: अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह।
1: इस मौके पर वो तसव्वुर कर रहे थे कि नए ईरान के हुक्मरान बन गए हैं। खुमैनी और इसके सारे शागिर्द बहुत जल्द दीन पढ़ने पढ़ाने के लिए कुम वापस चले जाएंगे, लेकिन इमाम के कुछ और ही इरादे थे।
0: जी हाँ, मैं जहाँ तक इमाम को जानता हूँ, ऐसा नहीं था कि जैसे दूसरे लोग ख्याल कर रहे थे कि वो सूरत हाल से गलत फायदा उठाते हुए सबको अपने मकसद में इस्तेमाल करेंगे और फिर उन सबको पीछे हटाकर दूर फेंक देंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। इमाम खुमैनी अपनी सारी जिंदगी में एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने हक की खातिर आवाज बुलंद की, जो कोई भी इस तरफ था या दुश्मन की तरफ था, सब इस बात की ताईद करते हैं। वो लोग जो बाद में इनकलाब के रास्ते में से अलग हुए, वो खुद पीछे हटे थे। हत्ता मुजाहिदीन खल्क भी इमाम खुमैनी और उनके दरमियान वाज़े इख्तिलाफ के बावजूद इमाम ने दो मरतबा उन लोगों से और मसूद रजवी से मुलाकात की, यहाँ तक कि उन्होंने इस्लामी जमहूरी निज़ाम के खात्मे के लिए मुसल्लहाना जंग का ऐलान कर दिया और हमले शुरू कर दिए।
3: अगर हमने इब्तदा से फासिद हुकूमत को तोड़ा है और उस इंतहाई खराब बंद को हटाया है, तो अगर हम इनकलाबी तर्ज से चलते तो सारे ज़राए अबलाग के कलम तोड़ डालते, गैर जमहूरी और गुमराह जमातों पर पाबंदी लगा देते। अगर उनके मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी होती तो आज हमें ये तकलीफ़ें ना उठाना पड़ती। अगर हम सिर्फ इनकलाबी होते तो उन्हें इजाज़त न देते कि ये अपने वजूद का इजहार करें, तमाम जमातों को गैर कानूनी करार दे देते, तमाम गिरोहों पर पाबंदी आयद कर देते। सिर्फ एक जमात होती, हिज़्बुल्लाह और हिज़्ब मुस्तज़अफ़ीन।

0: फरवरी 1980 से जून 1989 इमाम की रहलत तक तारीख ने रूह उल्लाह के लिए एक मुनज्जम और कानूनी कयादत का अंदाज तहरीर किया है जो मौजूदा शिया तारीख में बेमिसाल है। उन्होंने अपने हर इकदाम में एक इंतजामी कमेटी तश्कील दी है कि जो आपकी तालीमात, नसीहतें और अहकाम को अमली शक्ल देती थी। खामनाई, रफसंजानी, बहश्ती वगैरह इस निज़ाम व हुकूमत के अंदर खुमैनी के मजबूत दस्त व बाजू थे। इस मरहले में इमाम की हिमायत के साथ खामनाई और बहानर ने अंदरूनी निज़ाम पर काम करना शुरू किया। एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम हज़्बे जम्हूरिये इस्लामी रखा था कि वो अमली इकदामात में इमाम का दस्त व बाजू बने।
1: इस तरह की बैत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी। आप जब इनकलाब के साथ बैत करते हैं और आप अपनी बैत की तजदीद करते हैं तो असल में आपने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत कर ली है। जो शख्स आज इमाम खुमैनी के साथ बैत करता है

1980 की सर्दियों में इनकलाब के बाद ईरान में पहले सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए। इस मौके पर बहुत सी शख्सियात और जमातों

0: जो अफराद वोट डालने के अहल हैं, इनकी कुल तादाद तकरीबन 1,95,00,000 से लेकर 2 करोड़ है। इस एतबार से हम कह सकते हैं इन इंतखाबात में 70% वोटर्स ने शिरकत की और उनमें से तकरीबन 75% वोट्स ने जनाब बनी सदर के हक में वोट दिया है, लिहाजा उनका सदर मुंतखब होना वाज़े है और पहले मरहले में उनकी बरतरी हतमी हो गई है।
1: हज़्बे जम्हूरी इस्लामी की मुमताज शख्सियत आका खामनाई ने नमाज जुम्मा में कहा, हम मुंतखब सदर की हिमायत का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा, अवाम को चाहिए कि सदर की अताअत करें और सदर भी अवाम की नसीहत को खुश दिली से कबूल करें। इनकी बातें रूह अल्लाह के करीबी लोगों की जानिब से बनी सदर पर अदम एतबाद का वाज़े इजहार था। दूसरा वाज़े इशारा ये था कि हज़्बे जम्हूरी इस्लामी ईरानी सदर के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगी, लेकिन हर बात और हरकत पर नजर रखेगी।
2: मर्दम दर मुकाबले रईस व ज़िम्मेदार खुद मुवज़्ज़फ़ हैं कि हैसियत उरा।
3: अवाम पर अपने सदर और हुकुमरान की निस्बत ये फर्ज है कि वो उसकी हैसियत और शख्सियत को महफूज रखें, उसकी अताअत करें, उसके पीछे चलें, उसे किसी मैदान में अकेला ना छोड़ें। इसी तरह अवाम का फरीजा है कि अपने सदर, हुक्मरान और आला हुकाम को नसीहत करें, उनके लिए खैर ख्वाही करें। इस्लाम की तरफ से ये एक अहम जिम्मेदारी है कि अवाम हुकूमत और आला हुकाम की मुशीर हो।
1: सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद हज़्बे जम्हूरी इस्लामी ने पार्लिमान के इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। इमाम खुमैनी ने पार्लिमान की रुकनियत के लिए उलमाए दीन को उम्मीदवार बनने की इजाजत दे दी।
3: फिर हमें कहा कि पार्लिमान की तरफ जाएं, पार्लिमान की तरफ बढ़ें, पार्लिमान अहम है।